आया सो चल सी सब कोई आई बाहरी है इसके जी प्राण है तो साहिब मनो विचारी है आप

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास ही सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो। श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइय डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौन दा बिताए। सब थाई हुई सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना राम जपिया वंट सकिया।

अमृत वेले ते दीवान सजाए गए सजे हुए दीवानंदर शब्द कीर्तन गुरबाणी लड़ीवार कथा विचार से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखरवादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटा बंदर।

गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमारी रह रास रहाओ, हर जन के बड़ भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलें त्रिपता सिंह, मिल संगत गुण परगास, जिना हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखया लखास, तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मान चितवहे उदम, जा आहर हर जीओ प्रया, सैल पत्थर में जनते उपाए, ताका रिजक आगे कर धरया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरया रहाओ, जन न पिता लोक सुत बहिता, कोई ना किसकी तरया, सिर से रिजक समाहि ठाकुर, कहे मन पौ करया, ऊडे ऊड़ आवे सै कौन सा, तिस पाछे बचरे छरया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में ही सिमरन करया।

भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर निके अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप ताप ही जपहीं बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहुसिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जी बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई।

जिस नौ कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुगवाया, तुदे आप बिछोड़या आप मिलाया, तू दरिया हो सब तुझ ही माहे।

प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरण भैरे निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकजों महपग नहीं चले हम देखा तह डूबी अरे मान एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसर तेरे गुण गलया रहो ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवंत नानक तिन की शरना जैना तू ना ही विसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मान खुदे होरिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भाजे केवल नाम सरंजा

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करोहा देर छा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबय तुम काब हो आभाद मोहे बचाव हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबेरन को आय संग्रिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरना ते आऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिखो हमारे तारिये चुन चुन शतर हमारे मारिये आभाद मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करिहो रक्षा राख लो मुहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहें हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंद जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो घटगड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

जन्ने घड़ घड़ की पढ़ पढ़ की जन्ने जाव उद कर करा कर तारा प्रजा तरत तव दे अपारा जब आकर्क करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत देहें धर सब हूँ जीते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब हीते रहत नरालम जानत भेद भेद अर आलम रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मोड़ उचारत पिता जाको पेव न पावत बेदा ताको कर वाहन अनुमानत महामोड़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुपस रूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहों फूल राजा हवे बैठा कहों सिमट पयो शंकर अकैठा सगरी।

सिखियो बारे असिख संघरो दुष्ट जिदे उठवत उत्पाता सकल मले शिकरो रण गाता जे आसितो जे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह अह रक्षा हुए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला कृपा दृष्ट तन जहे न हरिओ ताके ताप तनक मय हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शहाशवय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें सुमारा काल फांसते ताहे ओबारा जिन नार नाम तिहारो कहा।

आप हाथ दे ले हो बारी सर ठोर मो हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर ठोर मो हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई।

राम रहीम पुराण कुरान। अनेक कहें मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सभाए, बहुपेद कहें हम एक ना जान्यो।

होरा सगल द्वारी को छाड़ के गए हो तुम्हारो द्वार, मही गहे की लाज अस गोविंदास तुहा, सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुम्हारो द्वार, मही गहे की लाज अस गोविंदास तुहा। राम कली महला तीजा अनन इक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनंत पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां बाधाइयां।

कर्षांत सुख मनय वस्या जैनो इच्छा सब पुजैया सदा कुर्बान कीता गुरु बिट्टो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो।

दत्तूरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे पिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तुरे मंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो।

आए आहिनेस सहज सुपाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसमदी

मल जनम जनम दी कट्टी है सज्जन सच्चा पातशाहो सिरशाह देशाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसाहो सज्जन सच्चा पातशाहो सिरशाह देशाहो जिस पास

मन तन आज्ञय राख कै ऊपी सेव करे एं गुरमुख आपन वारी सब राज सृष्ट काले नानक गुरमुख बुज्जिय जा अपे नजर करे महला तीजा जिन

नानक कुल उदारे अपना दर गए पावे मान पौड़ी, गुरमुख सखिया सिख गुरु मेराइया।

जिन्ना गुरु प्यारा मन चित तिन भाव गुरु देवैया गुर सिखा इको प्यार गुर मित्ता पुत्ता भाइया

गुर सिखा इको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया गुर सतगुर बुल्लह सब

तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो, भगत जोग को जैतवार हर जनक उपा

गुर अर्जन कर गुर रामदास अनपौ ठहरायो। जनक राज बरताया सत जुग आलीना, गुर शब्दे मन मानिया अपति जपतीना। गुर नानक सच नीव साच सत गुर संग लीना, गुर अर्जन कर गुर रामदास अपरंपर बीना। खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरे हो, बिमल बुद्ध सतगुर।

0: जिन पारस परस मिलायो।
1: जय जयकार जास जगे अंदर मंदर भाग जुग शिव रहता गुरपुरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारण काल सहार तुहे जस बकता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारन शब्द सार हर सम उदार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नवनिद नानक हुटे गुर रामदास तन सर्व में सह

लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर पर चायो गुर पर चै परवान राज मह जोग कमायो धन धन गुर धन अपर सर सुपर परायो गुर गम प्रमाण अजर जरियो सर संतो।

अम्यो रसना बदन बरदात अलख अपार गुर सूर शबद हो मैं निवार्यो पंचा हरने दल्यो सुन सहज निज कर

साहिब तुझन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तत नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह सच वसाया मूरख सच न जाननी मन।